0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: योर हेल्थ योर वेल्थ द नंबर वन हेल्थ प्रोग्राम Join us on Radio and TV Jagriti as we continue to discuss interesting and informative topics to improve the health status of our country. The date, Tuesday, 5 p.m., right here on your number one Hindu station, Radio and TV Jagriti, Sitaram.

आज की महफिल जनाब राज इलाहाबादी साहब की गजल से शुरू कर रहा हूं, और गजल से पहले यह खता पेश है।

0: Our society belongs to all of us. If you see something wrong, say something, call 800 TIPS or 555. A message courtesy, Paguan Zings, Port of Spain and Chaguanas, building Trinidad and Tobago for a better world.
1: You are listening to Radio Jaguity 102.7 FM.
2: कितना रोकूं मन के शोर को ए कहां रुकता है इस शोर से परे उस मौन से मिलना है मुझे शिव से भी नहीं शिव में मिलना है

हर हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय हो। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड फॉर आरती। दोस भक्तस फॉर प्रेजेंट फॉर लव्ड इन लाइक टुडे इन दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ भगवान श्री राम अ फ्लावर। लेट भगवान श्री राम ब्लेस यू। श्री राम वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। एक्सेस भगवान श्री राम्स ब्लेसिंग्स।

की जय। पवन सुख हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री रामायण माता की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सत्य सनात धर्म की जय। सदगुरु की दंडवत जय जय सीताराम। आप कड़ा बैठे सच्चा फतेहरी ऑल ऑफ यू। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो ऑल जय सीताराम। कली मल हरण वेरी इंपॉर्टेंट थ्री वर्ड्स द लास्ट अंतरा द लास्ट वर्ड्स ऑफ रामायण आरती कली मल हरण। रिमेंबर प्रोटेक्ट योर हिंदी एवरीबॉडी। Also protect your Hindi, you protect your Dharam. Your scripture, the main one written in Hindi. So you protect your Dharam. The bhajans you sing and chant are in Hindi. Therefore protect your Dharam. So know the meaning of the Hindi words. Not difficult. At home you should practice at home. If you are hungry, say, may भूखा हूँ। आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ। आई एम थर्स्टी मैं प्यासा हूँ। पानी लीजिए। ब्रिंग सम वाटर प्लीज। सिंपल हिंदी। डोंट से पोटैटो से आलू। क्योंकि हिंदी को सम सेंटेंस ऑफ हिंदी मस्ट बी गोइंग सो एट लीस्ट दैट वन थ्रेड दैट कैन बी ब्रोकन विल कीप योर धर्म गोइंग देन यू बिल्ड ऑन दैट। Kali Malaharana. Kali means the age of darkness. Kali means dark, like Kali Mataji, dark colored Devi. Kali means the age of sin. Before we start, you all know very well, Kali Yuga began about 4,500 years ago plus. When Bhagavan Krishna disappeared from the earth, Kali Yuga started immediately. Bhagavan cleaned the earth of all impurities, but one remained called Kali. And Kali entered the crown, the king at that time. And Kali began to stain the mind of that king. He was very, very good and noble. His mind became very corrupt, very bad.

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
2: मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा।
3: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
1: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
4: वो नहीं,
3: you know,
2: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।